हे फिर देख रहा है आज आंख सेक रहा है कल हाथ सेकेगा आज ढीर छोड़ रहा है कल खुद ही रोकेगा आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है कल मेरी स्कर्ट खींचेगा